0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
3: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?

0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सोमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।
4: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
5: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
3: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
4: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
6: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
7: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
6: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
3: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
5: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ, उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
6: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
3: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
6: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
3: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
6: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
3: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
6: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
3: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
6: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा,

0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
1: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
3: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
3: अरे अरे अरे, अरे फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
1: जी।
3: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
1: जी जी अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा, लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
0: ओ ये तो बहुत कड़वी है।
1: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
3: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, ले जाओ शाबाश।
0: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए, सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
0: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ उठो। चलो चलो शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
0: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
4: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला

0: खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
1: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
2: जी दादाजी।
3: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
1: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
3: बेटा।
2: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
0: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब
8: जी सर।
7: साहब कमाल जी, कमाल जी से कमाल
9: है। हम
7: लोग करो।
10: अबुआ राज, अबुआ तिसुम,
11: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
5: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
12: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
13: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
12: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
13: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
12: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
6: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
7: जी मेरा नाम कोड़ा है।
6: ओके, तो तुम कोड़ा हो
7: जी।
6: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
7: जी ये मेरी जमीन है।
6: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
7: जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
6: पिछले साल भी तुमने यही

0: बोला था, सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ली जाए।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
0: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
2: जी सर,
0: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
2: जी सर।
0: और खेत में रात का पहरा बिठा दो।
2: जी सर।
0: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
2: जी सर।
1: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो, साहब साहब साहब ऐसा मत करो।
0: चलो हटो,
1: साहब साहब साहब साहब
0: आओ। ए, ऐसे नहीं मानेगा।
1: साहब मत करो साहब।
0: चल सिपाही।
2: यस सर।
1: साहब
0: इसको हंटर मारो।
1: साहब
2: जी सर।
1: साहब साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब साहब मत करो साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
3: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।
4: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
3: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। बाजार में नहीं बेच सकता। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
4: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
5: भाई कान्हू।
6: जी भैया।
5: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
6: हाँ वो तो है, आज ही देखो ना क्या हुआ।
5: क्या हुआ?
6: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
5: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
6: हाँ भैया।
5: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की बैठक बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
6: लेकिन भैया मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
5: तो फिर
6: कम से कम आसपास के 5-10 गांव को बुलावा भेजना चाहिए।
5: हाँ ठीक कहा तुमने।
6: हाँ
5: ऐसा ही करेंगे।
6: जी भैया।
4: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
4: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया।

0: इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
1: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कहनू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
2: अंग्रेजों का अत्याचार तो होता ही जा रहा है। अरे हमारी जमीन जब्त हो
3: जाएगी।
4: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
5: सही बोले, सही
4: कहे। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
0: हाँ सही कहा।
4: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
5: सिदो भैया सही बात
2: कह रहे हैं।
4: बाजार में हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
2: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
4: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
6: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
4: अब करो या मर जाओ।
6: अब करो या मर जाओ।
4: अबुआ राज अबुआ किसुम।
6: अबुआ राज अबुआ किसुम।
4: अबुआ राज।
0: इस सभा में सिदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ

0: साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।